मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

बाक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे, मस्त रहे, सांभळतो रहे. ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से

0: जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेशदास, धर्मनतीनबाई और मोतीमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: ये अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
1: अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है। यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ?
7: ये क्या हुआ?
6: अरे
7: बच्चों,
6: फट गया।
7: सब पीछे हटो, पीछे हटो, जमीन पर लेटाओ।
6: तुम्हारा निकल रहा है, तुम्हारा निकल रहा है,
2: तुम्हारा। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी

0: आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे,
1: ये आदि क्या कर रहा है,
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
2: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
1: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
3: सही में
1: बहादुर सैनिक हो तुम।
4: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
2: Yes, come in.
5: Sir.
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
2: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
4: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
4: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन, निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
7: यस सर।

0: निशाने पर आ गए हैं सर।
1: फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
0: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
0: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया, भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली

0: भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

यूज करो छो तो आईट्यून स्टोर पर जाओ, रेडियो पालनपुर लखो, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एनी पर रहेला सोशल मीडिया ना कोई पण प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक के पछी फीडबैक सेक्शन में जाइने मेल करी दो तमारी इच्छाओं ने लागणियों ने अहींया स्क्रूटिनी कमिटी द्वारा समयांतरे एने स्क्रीनिंग करीने तमने मौको चोक्कसथी आपवामां आवशे। आ साथे तमारी पासे अमारो एक व्हाट्सएप नंबर छे 9512996688, याद रखो 9512996688 व्हाट्सएप नंबर छे। एनी पर तमारो अवाज फाइल के स्क्रिप्ट जी पण छे लखीने मोकली आपो, ए पण अमारी कमिटी द्वारा रिव्यू बाद आप सौने एमांथी तक पण मळशे अने तमारी मोकलेली कृति के वात ने रजू पण करवामां आवशे। फरीथी मळीशुं आवाज आउटिंग एपिसोड साथे आरजे अंजलि, आरजे जीनल, आरजे रवि के पछी आ स्टूडियो परना आरजे कवन नी साथे वात पण करवी होय तो सौ पहला तो तमारे व्हाट्सएप मेसेजीस करवा अनिवार्य छे। तमारी लागणीओने अमारी साथे पहोंचाडो, रेडियो पालनपुरना कोई पण कार्यक्रम विशेनी वातने पहोंचाडवानुं चूकता नहीं। त्यां सुधी अलविदा दोस्तो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

बक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

हाय नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी किताब लेकर आई हूँ। हमने कई आत्मकथाएं पढ़ी हैं, कई आत्मकथाएं हमने स्कूल के जमाने में लिखी होगी, पर कभी आपने सुनी है एक गधे की आत्मकथा? तो हाँ, आज हम एक पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं और उसी पुस्तक का नाम है एक गधे की आत्मकथा। किताब जिन्होंने लिखी है उनका नाम है कृष्ण चंद्र जी। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में लिखा है, इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा। महानुभव, मैं न तो कोई साधु सन्यासी हूँ, न कोई महात्मा धर्मात्मा, न श्री 108 स्वामी गहम गहमानंद का चेला हूँ, न जड़ी बूटियों वाला सूफी गुरमुख सी मजेला हूँ, न मैं वैद्य हूँ, न डॉक्टर, न कोई फिल्म स्टार हूँ, न राजनीतिज्ञ। मैं तो केवल एक गधा हूँ जिसे बचपन के दुष्कर्मों के कारण समाचार पत्र पढ़ने का घातक रोग लग गया था। होते होते यह रोग यहाँ तक बढ़ गया कि मैंने ईंटें धोने का काम छोड़कर केवल समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। उन दिनों मेरा मालिक दब्बू कुंभार था, जो बाराबंकी में रहता था, जहाँ के गधे बहुत प्रसिद्ध है, और सैयद करामत अली साहब बारेटला की कोठी पर ईंटें धोने का काम करता था। सैयद करामत अली साहब लखनऊ के एक माने हुए बैरिस्टर थे और अपने पैतृक नगर बाराबंकी में एक आलीशान कोठी स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। सैयद साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए अपनी कोठी का जो भाग उन्होंने सबसे पहले बनवाया वह उनकी लाइब्रेरी का हाल तथा रीडिंग रूम था, जिसमें वह प्रातःकाल आकर बैठ जाती। वह बारह बरामदे में कुर्सी डालकर समाचार पत्र पढ़ती और ईंटें ढोने वालों की निगरानी भी करती। उन्हीं दिनों मुझे समाचार पत्र पढ़ने का चस्का पड़ा। होता अधिकतर यूं था कि इधर मैंने एक उठती हुई दीवार के नीचे ईंटें फेंकी, उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते ये शौक यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुंच जाता। बल्कि प्रायः ऐसा भी हुआ कि समाचार पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वह सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं ना जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। मैं कह रहा हूँ ओ। ईडन, आइजनहावर, बुलगानीन फिर मुलाकात करेंगे और वह कह रहे हैं आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ चच। सिकंदरिया की हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए और वह कह रहे हैं बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईंटें गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे ईंटें धोने के लिए ले जाता, लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वह स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि

सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिन स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सके। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे के बजाय एक खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब की कोई संतान न थी। खैर, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहां के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर के बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटें कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था, और कहा मुझे ईंटें धोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंदर। कहीं मत जाइएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। रात भर भूखा प्यासा मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठुठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि एक दिन निकलते ही सैयद करामत अली साह की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटें धोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढम मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैंने उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला कर दिया। सैयद करामत अली साह को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासी फल विक्रेता भी थे, जिनके लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सौ भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली साह की नई बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहां पहुंचा तो गंडासी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। ये शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया, ये गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए, ये खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर

सीताफल, जोस के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसम्बी, सैली के स्थान पर सहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़िया, सुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और लहमत के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा।

तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लारी में भरकर लखनऊ ले आओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडा सिंह के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लारी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई तो अंतिम पुस्तक की लारी भी पहुंच गई। तब कहीं गंडा सिंह के नौकर ने मुझे छोड़ा। मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मार कर वहां से भगा दिया। मैंने सोचा जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वहां रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल खड़ा हुआ। सोचा दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला विद्या राज्यों का राजनीति का केंद्र भी, वह किसी न किसी प्रकार गुजारा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं मत जाइएगा, यही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर विद आरजे अंजलि।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

लिए गुलशिदां है, मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

हाय नमस्कार, वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक ढेर सरहे दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही, मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े थे। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश को, न जाने किस बिचारे का गधा चुराए ले जा रहा है। रई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे, यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर से फसादी आगे बढ़े। उस बिचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुयायी विनय की, मैं हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है, तुम माले गनीमत हो। मैं, हुजूर मैं माले गनीमत नहीं हूँ, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता। मौलवी ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। मैं ठीक ठीक तो कह रहा हूँ, न मैं मुसलमान हूँ न मैं हिंदू हूँ, मैं तो गधा हूँ। मौलवी ने कहा, तू बहुत बदमाश मालूम होता है, हम घर जाकर तुझे ठीक करेंगे। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर

0: बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के विभिन्न औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी और पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग से प्रभावित हुए बिना न रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर काहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और एक गधे को बीच सड़क में काहा लगाते देखकर हंसने लगे। वे बेचारे मेरी दुष्ट आवाज पर हंस रहे थे और मैं उनकी दुष्ट सभ्यता पर कहे लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरे ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर धकेल दिया। इन लोगों को मालूम नहीं कि कभी कभी गधे भी इंसानों पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने से बहुत से दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा इत्यादि, परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इस दरवाजों के भीतर प्रायः गाय, भैंसे, बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाइयां बिछाए ऊँगते रहते हैं। हाँ, इन दरवाजों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई है जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है। संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूद कर घरों में प्रवेश किया करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ आरजे अंजलि के साथ।
1: अभी अलविदा मत कहो।

दिल्ली में नई दिल्ली है और नई दिल्ली में कन्नॉट प्लेस है। कन्नॉट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता है, परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहनते हुए देखा है। स्त्री अपने मुंह और नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वो बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है, यह आज मालूम हुआ। कन्नौट प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यहीं चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं 2-3 दिन से तो भूखा था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, यह कमबख्त गधा यहां कैसे घुसा? मैंने पलट कर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देखकर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींचकर थाने ले गया। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो रामसी? रामसी ने कहा, हुजूर यह एक गधा है। गधा तो है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर

0: इंडिया गेट पर घास चर रहा था। अरे घास चर रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चरने नहीं चली गई? इसे यहाँ क्यों लाए हो? ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर देते। इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? राम सिंह ने रुकते रुकते मेरी और विजय दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर यह बेजबान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया, फिर बोला, राम सिंह तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
1: नहीं नहीं यह बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आज अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की तरह बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा या सुना नहीं था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है, हेड कांस्टेबल ने क्रोधपूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सी है, मेरे बाप का नाम प्यारे लाल था, मेरे दादा का नाम जीवन दास था। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, ज्योति से मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ कि हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का और वही पोते का। इससे क्या लाभ, ज्योतिषी ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योतिषी से पूछा। नहीं, ज्योतिषी ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज के 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूँ, श्री गधा। बोलिए फिर, क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योतिषी ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा। उसका संदेह और बढ़ गया। उसे धीमे स्वर में रामसी के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो ना हो यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। रामसी ने कहा, हुजूर मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा कर देखना चाहिए, भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योतिषी ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। चलो इसे उनके सामने ले चले। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए मेरे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चानन राम के सामने चला। चानन राम की मूछें बिच्छू के डंक की तरह खड़ी थी और उसका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चानन राम को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चानन राम ने उसकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा,
1: तो तुम पाकिस्तानी के जासूस हो।
0: मैं चुप रहा। चानन राम ने जोर से मेज में मुक्का मार कर कहा,
1: समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो।
0: मैं फिर चुप रहा। चानन राम ने दांत पीसते हुए कहा,
1: कमबख्त, बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो।
0: यह कहकर चानन राम मुझे मुक्को लातो और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी और आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योतिषी और राम सी की ओर देखकर बोला,
1: अरे यह तो बिल्कुल गधा है और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है। तुम मुझसे मजाक करते हो।

0: अभी तुमको डिसमिस करता हूँ।
1: राम सी और ज्योति सी दोनों भय से थर थर कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोली,
0: हुजूर अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह। तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और कांजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आए तो नीलाम कर देना।
1: मैं खुशी खुशी बाहर आया, मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं भूलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, 1 हफ्ते तक कोई मालिक न आया, फिर मुझे नीलाम कर दिया। अब कि मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्णनगर में रहता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तो जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,